0: सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की तीन दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यार का पैगाम आज तेरे नाम लिखा,
1: मेरा ये दिल मेरा सब जहान आज तेरे नाम लिखा,
0: अपना हर मुकाम चाहत का अंजाम आज तेरे नाम लिखा।
1: तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी,
0: मैंने अपना पूरा जीवन आज तेरे नाम लिखा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन आज तेरे नाम लिखा।
0: नमस्कार श्रोतियों, ये जेड़ा साडा पैगाम है अज असी तुहाडे नाल लिखिया।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे प्रोग्रामा दे नाल तुसी अपना प्यार ते अपना समा लिख दिता है ते फिर प्रोग्राम पैगाम जेड़ा है ओ असी साडे श्रोतियां दे ना लिख दिता।
0: जी बिल्कुल जी, श्रोतियां दे ना लिख दिता है क्योंकि श्रोते पैगाम प्रोग्राम नू ते आकाशवाणी एफएम बठिंडा नू बहुत प्यार करदे ने
1: ते तुहाडे इसे प्यार दी हामी अज प्रोग्राम पैगाम दे विच भर रहे हैं। मैं मनदीप रजौरा
0: ते मैं दीपा छाबड़ा।
1: बहुत सारे पैगाम तुहाडे सानू मिलदे ने। शनिचरवार वाला दिन साडे लई बड़ा खुशकिस्मती भरिया हुंदा है कि बहुत सारे स्रोते जिहड़े है सानू पैगाम करदे ने। साडे पैगाम दे नंबर 77173 7146 दे उत्ते।
0: मनदीप जी, सिर्फ शनिचरवार नहीं सगों ऐतवार भी साडे लई बहुत वधिया हुंदा है क्योंकि शनिचरवार नू साडा प्रोग्राम जिहड़ा है ओह रिकॉर्ड हुंदा है ते ऐतवार नू की हुंदा है जी?
1: इसदा हुंदा है प्रसारण।
0: 77173 7146 दे नाल नाल स्रोते सानू खत भी लिखदे है मनदीप जी।
1: जी बिलकुल, स्रोतियां दे पोस्टकार्ड ते उहनां दे व्हाट्सएप पैगाम ते आधारित हुंदा है साडा प्रोग्राम
0: पैगाम।

0: कमला देवी, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा। ते इन्हां दे पैगाम दा नां है जिंदगी।
1: वाह।
0: हस के जीना यही दस्तूर है जिंदगी दा, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी दा, बीते हुए पल कदे वापस नहीं आंदे, यही सब तो वड्डा कसूर है जिंदगी दा।
1: क्या बात है जी, क्या बात है। जिंदगी दे इस कसूर लई जिंदगी नूं की सजा दित्ती जावे, उस नूं हसण हसाउण दी सजा दे दित्ती जावे, जो बीत गया सो बीत गया, जो साडे कोल आया सी उस नूं गलवकड़ी पा लईए।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत वधिया गल आखी तुसी मनदीप जी। ते मेरे कोल अगे पैगाम दे विच पहुंचे ने सतेश कुमार बांसल, पिंड सांवत खेड़ा, नेड़े मंडी डब वाली तो।
1: जी
0: जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव।
1: जी इसलिए ही कहंदे हुंदे ने कि कुछ भी करो पर किसी नाल दिल जड़ा है वो नहीं लगाना, सिर्फ आकाशवाणी FM बठिंडा तो इलावा।
0: ते मनदीप जी अगला पैगाम मैं शामिल करन लगी हां, नथु राम शर्मा, अनाज मंडी काला वाली, जिला सिरसा, हरियाणा तो।
1: जी
0: ये कहंदे, मत कर तू हिसाब मेरी मोहब्बत का, मत कर तू हिसाब मेरी मोहब्बत का, वरना ब्याज में ही तेरी जिंदगी गुजर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, असी तां अपनी जिंदगी पहलां ही लुटाई बैठे हां, साडे स्रोतियां दे प्यार दा जो ब्याज है वो असी कदे भी नहीं चुका सकदे, इस लई असी उन्हां

0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग
1: किवें भोले चुप करके बैठे बी
2: ओ की दसा बी नवी दुकान भी खोल ली ते नवा समान भी पा लिया स्कीमा भी कई देतियां ते भारी छूट भी देती कारोबार जमा ही ठंडा पिया ए समझ नहीं आ रहा भी लोका तक किमें पहुंच कीती जावे
1: ना की गल सारी उम्र भोला ही बन के कट देनी है नवा जमाना यार नवीं तकनीकां दी वरतों करो ते अजकल तां आकाशवाणी बठिंडा तों भी लोक अपने कारोबार दी मशहूरी दे के बड़ी कमाई कर रहे हैं
2: रेडियो ते मशहूरी करके ओ भाई ओ किवें भला
1: रेडियो ते यानी के आकाशवाणी FM बठिंडा ते जेकर तुसी मशहूरी दिंदे हो अपने कारोबार जां सेवावां दी तां तुहाडा सुनेहा नेड़े तेड़े 70 किलोमीटर दे दायरे तक पहुंचदा
2: भाई पर इहदे लई करना की पऊगा
1: ओ जमा ही सौखा है ता आकाशवाणी बठिंडा दे कमर्शियल विभाग दा नंबर है 78-379-63-306 ए नंबर डायल करो ते देओ इश्तेहार अपनी कंपनी दा जां अपने बिजनेस दा
2: ओ खर्जा भाई मैं कापी ते लिखला नंबर तू एक बारी दोबारा बोल दे
1: नंबर है 78-379-63-306 नंबर दे नाल नाल वधेरे जानकारी लई तुसी ईमेल भी कर सकते हो airfm.bti@gmail.com दे उत्ते
0: इश्क दी ओ दास्तान जो सदियां बाद भी दिलां विच जिंदा है मोहब्बत दी ओ आवाज जो आज भी पंजाब दी रूह विच गूंजदी है जी स्रोतियो मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे बलजीत शर्मा जी लेके आ रहे ने अपना विरसा अपना सभ्याचार दे तहत फजल शाह दी लिखी अमर दास्तान सोनी महिवाल भाग

बहुत ही मिठी सुरीली ते बुलंद आवाज मैडम सीमा मेहरा जी। प्रसारण समा दोस्तो शाम 5:30 बजे, सुनना ना भुलना, दिन होवेगा एतवार।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ताफे सुनना ना भुलना। मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे। प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

इस बारे तुसी सुनोगे भारत दे महान योद्धा ते दूसरे परमवीर चक्र विजेता नायक जादू नाथ सिंह जी नो। वाचक संपादन मैडम सीमा मेहरा जी, निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, प्रोग्राम राखी सरहदां दे।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, दिन ऐतवार, सिलसिला राखे सरहदां दे। इस वार दा राखे सरहदां दे प्रोग्राम लैके आप जी दी खिदमत दे विच हाजर होणगे आकाशवाणी FM बठिंडा दी बहुत

0: संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन

करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम

0: to you, Sunil.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bags silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव पहला चोणवीं खबर सरकार नाल सहमति बनने तो बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना अंदोलन वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मगरों प्रहलाद जोशी को नवा सिख्या मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। करगिल युद्ध के नायकों के सन्मान विच अज देश भर विच करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप विच महिला सिंगल्स का खिताब जीत के इतिहास रचा है। भारतीय सब जूनियर पुरुष हाकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप विच पाकिस्तान हरा के सोने का तमगा जितया। महिला टीम ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार नाल सहमति बनने तो बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना अंदोलन वापस ले लिया है। कल केंद्रीय मंत्रियां JP नड्डा ते डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवी दिल्ली विच CJP वफद नाल तीजे गेड़ की गलबात की सी। मीटिंग विच प्रीख्या प्रणाली नूं बेहतर बनाउण ते पेपर लीक रोकण के उपावां ते विस्थार नाल चर्चा की गई। एक सांझी प्रैस कानफ्रेंस विच केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि सरकार CJP दीआं मंगां नाल सहमत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही उन्होंने विरुद्ध कोई FIR दर्ज की जाएगी। जेकर किसी प्रदर्शनकारी विरुद्ध पहले ही FIR दर्ज की गई तो उसे वापस ले लिया जाएगा।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट UG पेपर लीक तो बाद आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे से श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी हमदर्दी उन्होंने नाल है और नियमों अनुसार वध तो वध संभव सहायता यकीनी बनाई जाएगी। CJP वालों प्रीख्या सुधारों बारे दिए गए 5 नुकाती सुझावों बारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इन्हें गंभीरता नाल विचार करेगी और CJP नाल विचार वटांदरे तो बाद अगली कार्रवाई करेगी। इस दौरान CJP के मुख बुलारे सौरभ दास ने कहा कि अंदोलन इस उम्मीद नाल वापस लिया गया है कि जिन्हां शर्तों बारे सहमति बनी है वह निर्धारित समय सीमा अंदर लागू होणगियां। पहला सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 दिनों तो विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों तो पैदा हुई स्थिति तो दुखी ने और यह उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नूं नवां सिख्या मंत्री बनाया गया है। उन्होंने उन्होंने मौजूदा विभागों तो इलावा सिख्या मंत्रालय की वाधू जिम्मेवारी सौंपी गई है। श्री जोशी ने नवी जिम्मेवारी मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के ना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
2: श्री जोशी इस समय खपतकार मामले खुराक और जनतक वंड से नवी ते नवियोण योग ऊर्जा के विभाग संभालते ने। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत प्रभाव नाल स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 136वां एपीसोड होएगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के दूर

जी, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार नगमे ते प्रोग्राम दे विच दूसरा गीत सुनदिया अनुराधा पौड़वाल ते उदित नारायण दियां आवाजां विच फिल्म चाहत गीतकार जमीर काजमी ते संगीत नाल शिंगारिया है श्याम सुरिंदर ने।

जी श्रोतियो, हुण सुनदे हां फिल्म घर संसार दा गीत, जिस नूं आवाज दित्ती है मुहम्मद रफी ते आशा भोंसले ने। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी ते संगीत रवि दा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एजेंट विनोद। इस फिल्म का गीत आवाजें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल की ये रचना। मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाजें, रॉकस्टार फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम अजहर। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। मनोज यादव ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने। आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाऊस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व कृषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व कृषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुदसि लागला लंके वर काल कठिन आज पागला भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन झिड़कारुण एक आप्त सूत हर विला लंकेवर काल कठिन आज बादला
0: सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जी साथियों नमस्कार। प्रोग्राम निक्के निक्के तारे लेके मैं नीतीश कुमार ठाकुर तोड़े खिदमत दे विच हाजर हाँ। ते साथियों अज दा प्रोग्राम असी रिकॉर्ड कर रहे हाँ जिला बठिंडा दे पिंड रामसरा विखे आए हाँ। ते स्कूल दा नाम है सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामसरा। इत्थे अज पहुंचे हाँ ते इत्थे पहुंच के असी प्यारे प्यारे बच्चियां दे नाल गलबात करांगे ते जानांगे कि उन्हां दे मन दे अंदर किस तरह दे बलबले है ते ओह भविख दे विच की सोच रहे ने, केड़ियां उन्हां दी प्लानिंग्स है ते भविख दे विच जिहड़े टीचे उन्हां ने मिथे है कि ओह उस ਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ
1: ਜੈ ਹਿੰਦ।
0: ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ।

कर लौंदे ने तू जम्मे दवारा चौंदे ने तू जम्मे दवारा चौंदे ने पर जम्मे ना साडे हीरे आवे तेथों डर दे डाहडे वीरे आ।

इस बारे तुसी सुनोगे भारत दे महान योद्धा ते दूसरे परमवीर चक्र विजेता नायक जादू नाथ सिंह जी नो। वाचक संपादन मैडम सीमा मेहरा जी, निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, प्रोग्राम राखी सरहदां दे।

0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग।
1: प्रोग्रामा संबंधी सूचना अज यानी कि मिति 26 जुलाई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।

0: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद

0: भजन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल

विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को

निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर

शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने

के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा, पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा।

रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.102.7 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, DTH ਦੀ AIR ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर,

0: पूरे सन्मान नाल तिरंगा लहराउणा है। साथियो, हर साल 15 अगस्त तो पहला तुसी मैनूं बहुत सारे विचार ते सुझाव भेज दिओ। इस साल भी तुसी अपने विचार माई गॉव ते जरूर सांझे करने ने। मैनूं तुहाडे सुझावां दा इंतजार है। साथियो, मन की बात विच अज इन्ना ही। अगले महीने असीं फिर मिलांगे देशवासियां दियां अनेकां नवियां प्राप्तियां ते प्रेरक यतनां दे नाल। उदों तक दे लई मैनूं आग्या दिओ। बहुत बहुत धन्नवाद। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं माणयोग प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर सुन रहे सी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष

0: राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोलप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहद सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights. Be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today."
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: The Prime Minister said that a special Shaurya Vijay Yatra has been organized this year, which began on the 14th of July from the National War Memorial in Delhi. This motorcycle rally will reach the Kargil War Memorial in Dras. Its message is one right, one nation, one salute. Mr. Modi said that this journey reminds everyone that the sacrifice made for the nation can never be forgotten. Mr. Modi said,

0: India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
0: The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports recently. Concluding his address, Mr. Modi spoke about the Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and ensure stricter punishment in cases of paper leaks and examination malpractices. And that is the end of this news bulletin.
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ 12:10:20 ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਟਸ ਰੌਕ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ।

0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग।
1: आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, दिन ऐतवार सिलसिला राखे सरहदां दे। इस वार दा राखे सरहदां दे प्रोग्राम लेके आप जी दी खिदमत दे विच हाजिर होणगे आकाशवाणी FM बठिंडा दी बहुत ही मिठी सुरीली ते बुलंद आवाज मैडम सीमा मेहरा जी। प्रसारण समा दोस्तो शाम 5:30 बजे। सुनना ना भुलना, दिन होवेगा ऐतवार।

इश्क दी ओ दास्तान जो सदियां बाद भी दिलां विच जिंदा है, मोहब्बत दी ओ आवाज जो आज भी पंजाब दी रूह विच गूंजदी है। जी स्रोतियो, मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे बलजीत शर्मा जी लेके आ रहे ने अपना विरसा अपना सभ्याचार दे तहत फजल शाह दी लिखी अमर दास्तान सोनी महिवाल भाग 2।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ताफे सुनना ना भूलना, मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे, प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: ए तेरे नाम।
1: इन्नी दिखी जल्दी सी।
0: ओहो अते छोटी ए तेरे नाम अते ए मेरी गुट्टी दे नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: तुहाड़े नाम
3: सब कुछ मैं बैंक लॉकर अते फिक्स डिपॉजिट सब विच इसने ही नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहा तद पैसे कढ़वाउण विच इन्हां नूं आसानी होवेगी।
0: छुप छुप बोलो की है वी
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दे तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलसिले विच मैं यानी के ममता अरोड़ा लेके आ रही हूं एक दिलचस्प अते जानकारी भरपूर विषय क्वांटम कंप्यूटर भविष्य दी दुनिया दा सुपर दिमाग।

प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजी शर्मा ता फिर सुनना ना भुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ताफे सुनना ना भूलना। मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे। प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: जी 0104 2240 331 नंबर डायल हो चुका है। देखते हैं कि अगली भैन साढ़े नाल कौन जुड़ी है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी मैम, अपना नाम दस दो
1: साडा नाम रजिंदर कौर है जी,
0: जी। कितों गल कर रहे हो
1: असि नंदन कलोनी चो करते हैं जी।
0: जी।
1: धन्यवाद
0: प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। गीत केड़ा सुनोगे मैम?
1: जी। फलकार से दूधा जी,
0: हाँ जी, केड़ा गीत?
1: सुन सोहनी सूरत वालिया तेरा आउंदा बड़ा प्यार।
0: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश ते चला रहे हैं बलकार सिद्धू दा गीत
1: धन्यवाद
0: जी।
1: जी।
0: धन्यवाद जी। जी श्रोते, रजिंदर कौर जी दी फरमाइश ते चला रहे हैं बलकार सिद्धू दा ये गीत।

0: ठीक है जी, कितों गल कर रही हो मैम?
1: तो मैम
0: ठीक है जी, तो मैम गीत केड़ा सुनोगे
1: गोरे रंग वाली यार को छड़ गई। हाँ
0: जी? नक्षत्र गिल दा।
1: जी
0: ठीक है जी मैम, थोड़ी फरमाइश ते चला रहे हैं नक्षत्र गिल दा गीत, ते सुनो अपने रेडियो सेट ते।
1: ओके।
0: जी श्रोतियो, नेहा जी दी फरमाइश ते चला रहे हैं नक्षत्र गिल दा ये गीत।

0: नमस्कार। ए आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कारगिल विजय दिवस दे मौके ते देश दे बहादुर फौजियां नूं याद कीता है ते कहा कि भारत लगातार नवीं उचाइयां छू रहा है, भावें ओह रक्षा उत्पादन होवे, रक्षा बरामदां जां दोस्ताना देशां नाल सियासी सहयोग। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि अज 26 जुलाई एक अजिही तरीक है जिस नूं याद रखण लई किसे कैलेंडर दी लोड़ नहीं, क्योंकि अज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल एक विशेष शौर्य विजय यात्रा कराई जा रही है जो कि 14 जुलाई नु दिल्ली दी राष्ट्रीय जंगी यादगार तो शुरू हुई सी। ए मोटरसाइकिल रैली द्रास विच कारगिल जंगी यादगार तक पहुंचेगी। इस दा संदेश है वन राइड वन नेशन वन सल्यूट। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा सारे नु याद दवांदी है कि राष्ट्र लई कीती गई कुर्बानी नु कदे नहीं भुलाया जा सकदा। 1999 दी कारगिल जंग दौरान अपनियां जानां कुर्बान करन वाले भारतीय फौजियां दी बहादुरी दे सम्मान विच अज देश भर विच कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इह दिन जंग विच भारत दी पाकिस्तान उत्ते जित अते आपरेशन विजय दे सफलता नाल पूरे होण दी 27वीं वरेगंढ नूं दर्शाउंदा है। इस आपरेशन दौरान भारतीय हथियारबंद बलां ने जम्मू कश्मीर दे कारगिल जिले दे उन्हां खेतरां नूं मुड़ हासिल कीता जिन्हां विच पाकिस्तानी फौजियां अते दहशतगर्दां ने घुसपैठ कीती सी। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात भूमि दी रक्षा विच अपनियां जानां कुर्बान करन वाले बहादुर फौजियां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी चंडीगढ़ दी जंगी यादगार विखे कारगिल युद्ध दे शहीद

जी श्रोतियो, प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी लैके मैं हाजिर हाँ थोड़ी रेडियो दोस्त कमल सिद्धू। मेरे वालों आप सब श्रोतियों नूं प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करते हैं तुसी सब ठीक ठाक होवोगे ते सौण दे इस महीने दे विच बदलदियां रुत्तां दा नज़ारा लै रहे होवोगे। सो अज है जी दिन ऐतवार ते ऐतवार नूं जिहड़ा हुंदा हैगा प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी हुंदा है जी, उह साडे श्रोतियों दे लई। और इन्हां दे विच तुसी की करना हुंदा इस प्रोग्राम दे विच, स्टूडियो का नंबर 0164-242-331 मिला के अपनी फरमाइश सुननी होंदी है। और ये फरमाइश होंदी है हिंदी फिल्मी गीतां ते आधारित। जदों तक साडे पहले कॉलर साडे नाल जुड़दे ने उदों तक सुनदे आ मेरी पसंद दा ये गीत जो कि लिया गया है फिल्म जीत दे विचों, आवाज़ कुमार सानू ते साधना सरगम दी।

0: जी प्रोग्राम चल रहा है जी, टेलीफोन मिलाओ जी। ते साडे पहले कॉलर टेलीफोन मिला चुके ने, करदे आ गलबात। हेलो,
1: हाँ जी भाई, सत श्री
0: सत
1: अकाल।
0: श्री अकाल भाई जी, कौन गल कर रहे हो?
1: भाजनदास बोल रहे, चैनल वाले तो
0: स्वागत है भाई जी, की हाल चाल नी
1: ठीक है भाई, बढ़िया कृपा महाराज जी।
0: जी? चलो वधिया गल है। ते इस वेले की कर रही सी?
1: मैं तो जी क्या सी, निम्न थले मझा बनिया जी, बार बार कच्चे था जो। हाँ
0: वधिया गल
1: जी,
0: है, पशु है जेड़े
1: हाँ
0: कच्चे थां च बनने चाहिए है ना।
1: जी, कच्चे था जी, मिट्टी सीटी हुई सड़क उसे बारले पास से अपना
0: नहीं
1: था।
0: नहीं बहुत वधिया गल है, क्योंकि
1: हाँ
0: अजकल तो ना असि टेम्परेरी हल जे कर ले, भी मैट लिया के सट ले, पक्के थां
1: ना
0: कर
1: जी, ना
0: लिया, कर
1: अपना तो
0: लिया।
1: कच्चा था ही। हाँ कच्चा था, अपने छप्पड़ कोड़े नमा के अंदर ले जाने
0: वैसे
1: घरे।
0: थोड़े इधर ना मैं भी चीज वेखी है, भी हजे भी पशुआं दी संभाई है जेड़ी पुराने तरीकियां नाल वधिया तरीके नाल कीती जांदी है।
1: वधिया पुराने तरीके जी अपने
0: हाँ
1: दादा ने।
0: जी हाँ
1: हाँ
0: जी, बड़े दरख्त भी है, बोर्ड पिपल भी खड़े
1: दरख्त
0: है।
1: अपने, हाँ जी निम है बहुत सौलाए हुए। हाँ
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जी,
0: ठीक
1: एक
0: है,
1: दो टालियां रेते दिया सिट लेने बैठे रहने ने जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल भी जी। ते
1: नाल
0: गीत
1: तेल
0: वाल
1: लिया। हाँ जी,
0: गीत दस दो फिर, केड़ा गीत सुनिए अज?
1: ਇਸ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਧਰਮਵੀਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ
0: ਠੀਕ
1: ਮਰਜ਼ੀ
0: ਹੈ
1: ਕਰ।
0: ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
1: ਧੰਨਵਾਦ,
0: ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ।
1: ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭੈਣ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ।
0: ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ।

इश्क दी ओ दास्तान जो सदियां बाद भी दिलां विच जिंदा है, मुहब्बत दी ओ आवाज जो अज भी पंजाब दी रूह विच गूंजदी है। जी स्रोतियो, मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे बलजीत शर्मा जी लेके आ रहे ने अपना विरसा अपना सभ्याचार दे तहत फजल शाह दी लिखी अमर दास्तान सोनी महिवाल भाग 2।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ताफिर सुनना ना भूलना, मिति 27 जुलाई दिन सोमवार शाम 5 बजे, प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: जा ठीक है, क्योंकि बारिश आई है तो अच्छा,
1: बिल्कुल।
0: नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी से
1: थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी तो, है ना।
0: राहत मिली थोड़ी जी।
1: चंगी गल है। चलो गीत वाल वाद्य ते केड़ा गीत सुनोगे अज?
0: मौसम देते सुना दो जी,
1: ठीक है
0: थोड़ा
1: जी, मौसम देते सुना दिनी है।
0: ठंडा लगूगा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आज मौसम बड़ा बेईमान है, सुनाने हैं तुहानू गीत
0: जी जी जी
1: जी। शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बन ली।
0: थैंक यू।
1: लो जी, बंटी जी दी फरमाइश ते सुनदे हैं गीत। ते आ गया गीत तुहाडे रेडियो सेट ते।

0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना पुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग।
1: जी श्रोतियो प्रोग्राम चल रहा जी टेलीफोन मिलाओ जी ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त कमल सिद्धू आप सब दे नाल बनी हुई हाँ। स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा 1:47 ते 20 सेकेंट दा ते अगले साडे कॉलर है जेडे ओ भी मेरे ख्याल साडे नाल जुड़े ने। हैलो
2: हैलो मैडम
1: सत श्री अकाल भाई जी कौन गल कर रहे हो?
2: गुरमेल सिंह त्रिजवाला।
1: गुरमेल सिंह जी स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम दे विच।
2: धन्यवाद मैडम जी।
1: ते की हाल चाल ने भाई जी?
2: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ
1: ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ।
2: ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰਖਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,
1: ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਖਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
2: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜਾ।

0: खिलाए।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
0: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्र

0: अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंट कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल

0: स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर एफसी से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 2:30 ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

जी श्रोतियों, स्वागत करते हैं प्रोग्राम सुरीली दोपहर दे विच। अज प्रोग्राम सुरीली दोपहर दे विच सिलसिला रहेगा मेरा पिंड। ते तुहानू लै चलदे हां पिंड बंगी दीपा सिंह दी सैर ते, जिहड़ा कि है जिला बठिंडा दे विच। इस दा भाग दूसरा रहेगा और प्रोग्राम की मेजबानी करनगे कुलविंदर सिंह चानी, प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। आओ चलदे हां पिंड बंगी दीपा सिंह जिला बठिंडा।

0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भुलना मिति 27 जुलाई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत क्वांटम कंप्यूटर भविख दी दुनिया दा सुपर दिमाग।
1: आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, दिन ऐतवार सिलसिला राखे सरहदां दे। इस वार दा राखे सरहदां दे प्रोग्राम लैके आप जी दी खिदमत दे विच हाजर होणगे आकाशवाणी FM बठिंडा दी बहुत ही मिठी सुरीली ते बुलंद आवाज मैडम सीमा मेहरा जी। प्रसारण समा दोस्तो शाम 5:30 बजे। सुनना ना भुलना, दिन होवेगा ऐतवार।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी बरुड़ जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना, रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री

गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना विलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य, इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल, यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित दांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: जो जो बच्चे कुछ कहना चाहिए।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: नहीं नहीं हंसा जाता। सही बात है।
2: इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
0: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीनती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो

0: किसको बुलाता है?
1: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूँ नहीं।
2: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
1: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
3: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
1: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
4: हाँ, ये तो है।
3: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: वाई जी, वाई जी,
3: वाई जी,
2: वाई जी,
4: बेचारे।
5: कोई जाता नहीं।

0: ओह गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं,
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह?
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फर्रुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे।

अंधेरा भी तो छाया है, मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है, मैं पापी जो हूं। आज मेरा समीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है, मैंने सुलमे तो किए हैं अपनी फौजिया पर,

शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया मुझे माफ कर दे। और फरुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार

0: सियो मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सोहेल,
0: फौजिया
1: सोहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सोहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: कुछ नहीं
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा, मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो। हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख

आजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा? फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन क्यों? क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया और मैं अपनी मोहब्बत एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा।

0: अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
1: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सोहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे?
0: तो तुम नहीं मानोगे, तो लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फरुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फरुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फरुख दोनों की जिंदगियों में खून लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
2: अरे, ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहेल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन?
2: नीलम। हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: मेरे बच्चे, वो सोहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया।
3: मैं मेरा आखिरी सलाम। हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजिया,
3: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: फौजिया।

ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज

0: की वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख, वो पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
3: अभी अभी
0: औसी, मेरी बच्ची।
3: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहाँ कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूं।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूं।
3: इरादों?
2: जी, फौजी जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं,
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है
3: नीलम जी।
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब भी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अभी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची।

0: पथ और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं।
1: जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है?
0: हम दोनों को नहीं। सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलका जी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलका जी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य द्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे के। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
2: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा

0: हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को
1: राजी नहीं
0: राजी
1: थे।
0: नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था। हाँ, हवे की तरह बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो। ओके, 10 रुपए में, 25 रुपए में, जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बंबई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके। तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुना तो था ही। हाँ, तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं, वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ दिया कि हम फलां दिन को हम आपके अप दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में,

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा
1: हाँ जी,
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ एक
0: लगातार किए।
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चल रहा है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ,
0: किया था उसको लेके,
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और 5-6 दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह
0: अरे
1: वगैरह वगैरह।
0: बाप रे,
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: फगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का,
0: चंडीगढ़
1: और हाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे, और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है, हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
1: जी
0: मराठी नाटक
1: जी
0: पंजाबी में होने
1: जी
0: लगा। यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है,
1: चले,
0: आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन, जी,
1: हाँ डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो 1 साल ही मैंने वहां पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग।
1: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
0: ओहो,
1: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
0: श्याम
1: था
0: बेनेगल
1: श्याम
0: के
1: बेनेगल
0: एक्टर,
1: की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
0: दस्तक
1: की
0: फिल्म,
1: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेके
1: भोजपुरी
0: एक फिल्म
1: सिनेमा का
0: लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी,
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका
0: थे
1: हीरो था,
0: जी,
1: हाँ राकेश,
0: बाद में
1: वेरी
0: वासुदा ने

0: फिल्म
1: ऐसे।
0: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
1: अच्छा
0: वो हीरो थे पर वो बनी
1: वो
0: नहीं।
1: नहीं, वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी। तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
0: स्टार बन
1: बच्चन
0: गए।
1: है वगैरह वगैरह। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे तब,
0: जी
1: दुबला
0: जी
1: पतला था जब मेरे क्लास में था। तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
0: शैलेंद्र
1: बहुत
0: सिंह
1: मजा
0: वगैरह
1: आया।
0: भी थे। अच्छा
1: नहीं, मेरे क्लास में नहीं थे ना। तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के। हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई। और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
0: वाह वाह
1: हाँ,
0: वाह,
1: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली। हाँ, सब रवैया तो वो थे। और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली सर, ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि क्यों से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से।
0: जी
1: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, पर यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
0: क्या बात है,
1: कि
0: ये
1: हाँ,
0: ख्वाब भी नहीं था
1: ख्वाब
0: कि
1: भी नहीं
0: अब
1: था।
0: ये जगह
1: हाँ,
0: जिंदगी ले
1: ये
0: जाने वाली है।
1: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए।
0: जी
1: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है। एंड तो वहां चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
0: क्या
1: कहने
0: शानदार
1: कह
0: बात है,
1: हाँ,
0: वाह वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
0: पी
1: कुमार
0: कुमार
1: वासुदेव,
0: वासुदेव
1: पी
0: जी।
1: कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी,
0: ओहो
1: और हबीब तनवीर थे।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है, वाह वाह
1: लेकिन
0: वाह।
1: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में।
0: वाह
1: तो विच
0: वाह,
1: इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन। और वहां ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये बीबीसी से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह। लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
0: जी
1: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
0: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
1: जी
0: अबू अवार्ड जीता।
1: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ,
0: जी
1: तेहरान में।
0: वो चाय की टपरी वाला जो
1: हाँ जी, वो
0: वाली
1: छोटी
0: डॉक्यूमेंट्री।
1: सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं हाँ,
0: जी
1: टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी। चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
0: बिल्कुल
1: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था। और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी

0: इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया। और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी
0: हाँ,
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी।
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे। हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका। और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं। और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जा मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई, हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात
0: तुम
1: है
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहां पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में, वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी, हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे। और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है, वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा, कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी, दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो,
0: वो
1: क्योंकि अब तो
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: है
0: गई।
1: ना। एमएफ हुसैन मिले थे जी
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो,
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा, अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूं, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था,
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, 8 दिन की,
1: अरे अरे
0: 8, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन,
1: तोलो तो ये नाराज वाला जो मामला
0: हाँ,
1: था
0: नहीं
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई, और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, पंकज दा को,
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ, वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो।

0: फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने, पंकज पलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे और
0: हाँ
1: खरजदार आवाज से रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके फिर
1: थे
0: हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले, हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ उन्होंने कहा
1: वाह वाह
0: वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये करिया, फिर अब राय चंद बोराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर, और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं,
1: हाँ
0: हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी।
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा गए, नहीं
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप
0: उसके
1: रे
0: बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये,
1: कैसे
0: अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी। मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलां का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को अपनाए आपने
0: हेमंत कुमार बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की, इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है,
1: ओहो।
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना
1: जी
0: पंकज मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है, शायद
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहां इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पप्पीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था। किसी के भी बीच एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच इज नॉट ट्रू।
1: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बहुत बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज।
0: जी
1: देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देर आर सो मेनी डिफरेंसेज। इनफैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हर सेल्फ, अरुणा ईरानी,
0: जी
1: डाइज यू नो इन द फिल्म। सो अगेन, एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देर वॉज नथिंग, रियली नथिंग। इट वॉज नॉट एट ऑल
0: लोगों ने
1: अ
0: जबरदस्ती इसका कनेक्शन बना लिया।
1: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी।
0: जी
1: हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई। पर अब एंड
0: जाकिर साहब को
1: अनफॉर्च,
0: कैसे राजी
1: हाँ,
0: किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए। बहुत माने, ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स
0: जी,
1: विद
0: पहली बार ऐसा हुआ।
1: या, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग भाई ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
0: जी
1: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस

0: A very exciting idea that they got together eight so-called good film directors, parallel cinema directors,
1: जी
0: not the commercial usual people. हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया. बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड. तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए और भी ऐसे सात आठ लोग हुए एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड. एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक. एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So SAS didn't have a theatre.
1: अरे
0: So
1: अरे
0: फिर
1: अरे
0: television पे दिखाई.
1: जी जी जी
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. सो बैड लक ऑल द वे. सो इट्स नॉट बीन अ जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस. तो अनफॉर्चुनेटली SAS वॉज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी.
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: एक
0: जी
1: तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए
0: हाँ
1: मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव
0: संजीव
1: कुमार
0: कुमार
1: या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं
0: वो
1: जानना चाहता
0: अभी
1: हूँ।
0: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है.
1: जी
0: तो अच्छा,
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही. फिर
1: जी
0: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं. और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था,
1: जी
0: मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था. आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था. हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा. फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है. तब अमोल ने कहा अभी देखो सही, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो. मैंने कहा हाँ हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है. फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है. मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट. मैंने कहा ठीक है. मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं. तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था. ऐसे पांच छह दफे हुआ. और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी. तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही, मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है. और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही. और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है या मुझे ये कर रहा है. और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ. तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया. और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई. अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी. अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी. और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे. वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी. तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी. और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा. ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने. है वो हवा में नहीं लिखा जाता,
1: जी
0: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है. वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा. और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो. कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह. तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई. संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया. और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी.
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है. और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है. तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ. मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें. और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज

0: तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है, मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
1: पूरी टूरी वाला
0: फिर
1: सारा
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।

0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा, आई हैव कॉट द फिश ना। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे एवरी साइन की, जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं, 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से। और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए। और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, BR चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और GP सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के, जैसा भी हो कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहां उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव्ड द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेक अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल टू बेस्ट। और फिर शबाना और नसीर तय हो
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है
0: गए।
1: कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे
0: जी
1: नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो
0: हो
1: और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य
0: जी
1: रूप से
0: जी
1: हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं,
0: हाँ
1: जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका
0: हाँ
1: नजर आता है। तो
0: बिल्कुल
1: इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहां खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूं,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी, जी
0: या
1: जी
0: या
1: बिल्कुल, तो ये पांच हो गए।
0: हाँ
1: नसीर का जिक्र क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के
0: हाँ
1: लिए आपको अप्रोच किया,
0: जी
1: तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी,
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल के
1: नॉवेल के
0: कहो।
1: डायलॉग में
0: हाँ
1: बात हुई
0: नॉवेल,
1: थी।
0: और चार्ल्स डिकेंस
1: यस
0: जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है, नसीर की बीवी। रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिक हो और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते हैं मिसाल के तौर पर

0: मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना है नसीर कि वो
1: ये बात
0: चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मेरे
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे।
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकिस
0: बार्किस। और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी
0: चुपड़ी हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है क्या है
1: हाँ
0: हाँ। तो
1: हाँ
0: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड
1: क्या बात है, इसको कहते हैं
0: नहले
1: नहले पे दहला।
0: पे दहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल,
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूं कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल चाप के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका, हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता, मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर गया ऐसे, नहीं नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूं, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट
1: नेशनल
0: एक्टर अवार्ड,
1: अवार्ड।
0: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात है, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सर कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो डाली। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, कहते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता
1: हो
0: बट दैट वाज अ वेरी
1: जिंदगी
0: स्वीट
1: की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है, का
0: थिंग। जब
1: कोई
0: बताइए
1: मुकाबला
0: जरा
1: नहीं।
0: कितना ये सब

0: प्लान किया था। ओ नहीं, इसलिए इस वर्ष जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल
1: तीन अवार्ड्स मिले थे।
0: जी। एक पटकथा के लिए, मेरी मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए। एक
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ,
1: वो बताइए।
0: वो वहां बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था।
1: जी
0: बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वेंट गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार है। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव।
0: गलत है कि स्टार हो तो। इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासुस। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब। और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बेचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: लेकिन ये मजेदार बात है
0: सेंस
1: ये।
0: ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही
1: जी
0: बासु का।
1: यहां मुझे लगता है तो अनुभव का गाना आप सुन लेंगे।
0: हाँ, अरे वो तो गाना
1: मेरी
0: बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी जान,
1: जान मुझे
0: हाँ,
1: जाना कहो,
0: क्या
1: गीता रॉय
0: बात
1: की
0: है,
1: आवाज।
0: कनू रॉय,
1: हाँ
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है,
1: जी
0: प्लीज
1: जी
0: जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
0: एक और
1: गया,
0: आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 27 जुलाई, दिन सोमवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा गल्लां चो गल ते अज आपां गल कर रहे हैं जी कारगिल दिवस बारे। कारगिल दे युद्ध विच साडे किसान अपने परिवारां तों दूर रह के गर्मी सर्दी बर्फ अते मीह विच हर तरह दीआं मुश्किलां दा सामना करदे होए साडी रक्षा करदे हन। जदों असीं अपने घरां विच सुरक्षित जीवन बतीत कर रहे हुंदे हां तां उह उस वेले साडीआं सरहदां दे जिहड़े साडे जवान है खड़ के हर पल चौकस रहिंदे हन। इस लई इह साडा फर्ज़ बनता है कि असीं उन्हां दा सतिकार करिए अते उन्हां दे बलिदान नूं कदे वी ना भुलाईए। सो श्रोतियो, सच्ची देश भगती सिर्फ नारा लगाउण विच ही नहीं हुंदी। असीं चंगे नागरिक बन के ईमानदारी नाल कानून की पालना करिए, देश की संपत्ति की रक्षा करके, वातावरण साफ रख के, आपसी भाईचारे मजबूत करके देश की सेवा कर सकते हाँ। तो साड़ी ये जिम्मेवारी बनती है कि असी इस दे विच जिन्ना भी हो सकता है आपो अपना योगदान पाईए।

0: ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7:16 'ਤੇ 2240-331 ਯਾਨੀ ਕਿ 0164-2240-331 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਰੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 7:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੋਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ।
1: A talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, ek community jab koi problem se joojhte hai, ye ho sake ki ek kharab air quality ho या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब एनवायरनमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पर एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज कर सके। हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक CRZ नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे CRZ एक केस कैसे NGT का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं EIA नोटिफिकेशन के बारे में। EIA नोटिफिकेशन पे जो है It's based on an international law principle and as well as it's widely discussed in our court, जो हमारा court पे भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That needs to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है. तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था. उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो. तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दिस आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है. ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है. एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग. Certainly, rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottom-up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ne kya liye? 2018 mein Parivesh Portal, Ministry of Environment ne introduce kiya hai, NIC ke saath, jisme ek comprehensive legal window, single window diya gaya hai for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी तहत स्पॉन्सर प्रोग्राम जिसनू स्पॉन्सर किया सी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वालों। तो प्रोग्राम शाम सुहानी दे विच 0164-2240-331 इस नंबर नू मिला के

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी। तुहाडा स्वागत है अज दे प्रोग्राम शाम सुहानी विच। तुसी अपना नाम दसोगे जी?
1: मैडम। हाँ जी, मेरा नाम मेजर
0: पिंड बलाड़ वंजू। ते केड़ा गाना सुनना है तुसी?
1: सिंह है
0: ठीक है, मोहम्मद सदीक ते रंजीत कौर दा कोई भी गाना जेड़ा तुहानू पसंद है। तुहानू मतलब सारे गाने पसंद है इन्हां दे?
1: जी। सारे गाने पसंद है जी।
0: अच्छा जी, तुसी काम काज की करदे हो जी?
1: कम कार मैं तो घरे वेल नहीं, मुंडे करते हैं जी।
0: अच्छा, ये वेले क्यों जी? तुसी साडा प्रोग्राम सुन दे होंगे, बहुत वड्डा काम कर रहे हो। तुसी रेडियो सुन रहे होंगे ये काम भी बहुत वड्डा हैगा।
1: इधर तो लेके आते हैं कहीं सुनते हैं
0: नहीं
1: जी।
0: नहीं बहुत वड्डा काम है जी। तुसी रेडियो सुनना भी अजकल कोई सुनदा नहीं, बट तुसी सुन रहे हो तां बहुत वधिया गल है। तुहाडे नाल होरां नूं भी मोटिवेशन मिलेगी कि
1: हाँ
0: असी जे हुण
1: जी
0: घर वेले बैठे आंगे, बच्चियां ने सानूं वेले कीता होया काम तों, तां असी अपना रेडियो सुन के एंटरटेन करिए।
1: रेलगा बहुत सुनते हैं, तड़के तो लेके
0: नहीं, बहुत वधिया गल है जी। अपने सगो होर साथियां सहयोगियां नूं भी कहा करो कि

0: का विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि समूहक हिस्सेदारी हमेशा भारत के सभ्याचारक विरसे की ताकत रही है। उन्होंने गल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 च हिस्सा लैण वालिया नाल गलबात करदिया कही। सारे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे 400 तों वध नौजवानां ने अपने अनुभव सांझे कीते। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम च हिस्सा लैण वालिया नूं सरहदी खेतरां दीआं समाजिक आर्थिक स्थितियां सभ्याचारक विरसे ते विकास संभावनावां दी पहल समझ प्राप्त करन दा मौका प्रदान करदी है। ये प्रोग्राम भाईचारक हिस्सेदार राष्ट्रीय एकता ते सरहदी पिंडां दे रणनीतिक महत्व बारे जागरूकता नूं उत्साहित करन दी वी कोशिश करदा है। प्रधानमंत्री ने इस बारे कहा,
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उन्हां लोकां नूं जोड़न लई लगातार यतनशील है जो विकास दी मुख्य धारा तों बाहर रह गए ने। आजाद रूप विच इस यात्रा च शामिल होईआं नौजवान औरतां दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी हिस्सेदारी भारत दीआं धीआं दे आत्मविश्वास अते हिम्मत दा प्रतीक है। उन्हां कहा कि सरकार हर नौजवान खास करके देश दीआं धीआं नूं आत्मविश्वास नाल अगे वधाउण लई वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज प्रीख्या सुधारा ते एक उच्च शक्तिशाली टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। इस दी अगुवाई प्रसिद्ध तकनालोजी माहर नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश विच श्री मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स प्रीख्या प्रणाली नूं मजबूत करन ते ध्यान केंद्रित करेगी अते इस दीआं सिफारशां दे आधार ते भविख दीआं प्रीख्यावां दी भरोसेयोगता नूं यकीनी बनाउण लई जल्द तों जल्द जरूरी कदम चुके जाणगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश की प्रीख्या प्रणाली भरोसेयोग पारदर्शी होनी चाहिए है अते वध तों वध तकनोलॉजी का लाभ उठाना चाहिए है। उन्होंने भी कहा कि सरकार कल संसद विच एक नवा कानून पेश करन वल भी वध रही है जिस विच प्रीख्या नाल संबंधित बेनियमियां नाल निजिठण लई सख्त प्रबंध होणगे। श्री मोदी ने मुकाबले वालियां प्रीख्यावां दी अखंडता दी राखी अते लखां विद्यार्थियों के भविख की रख्या लई सरकार दी वचनबद्धता की पुष्टि की। सरकार बल्कि लोकसभा विच जनतक प्रीख्यावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 पेश करेगी। ए बिल सोमवार लई लोकसभा दी कारज सूची विच शामिल है। इस दा उद्देश जनतक प्रीख्यावां अनुचित साधना दी रोकथाम कानून 2024 विच सोध करना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अज सिख्या मंत्री दा अहुदा संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफे तों बाद श्री जोशी नूं कल इस अहुदे ते नियुक्त कीता गया सी। ओह खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड ते नवीं ते नवियाउणयोग ऊर्जा मंत्रालय दा विचार संभालणगे। अपना अहुदा संभालण तों बाद उन्हां ने वख वख योजनावां ते मुख प्रोग्रामां दे लागू करन दा मुलांकन करन लई सिख्या मंत्रालय दी समीख्या मीटिंग दी प्रधानगी कीती। सिख्या राज मंत्री जयंत चौधरी ते मंत्रालय दे कई सीनियर अधिकारी मीटिंग विच मौजूद सन। प्रधानमंत्री ने अज कारगिल विजय दिवस दे मौके ते देश दे बहादुरां नूं याद कीता है ते कहा कि भारत लगातार नवीआं उचाईआं च हो रहा है। भावें ओह रक्षा उत्पादन होवे, रक्षा बरामदां जां दोस्ताना देशां नाल सियासी सहयोग होवे। आकाशवाणी ते आपने मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने अज कहा कि 26 जुलाई एक अजिही तरीक है जिस नूं याद रखण लई किसे कैलेंडर दी लोड़ नहीं है क्योंकि अज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर भारतीय कुछ दिन पहला ग्लासगो विच शुरू हुई राष्ट्रमंडल खेडां विच हिस्सा लैण वाले सारे एथलीटां लई खुश है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: देश अज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके ते 1999 विच कारगिल जंग विच देश

0: सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले फौजियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातभूमि की रक्षा में अपनी जाना कुर्बान करने वाले बहादुर फौजियों को श्रद्धांजलि भेंट की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी चंडीगढ़ की जंगी यादगार विखे कारगिल जंग के शहीदों को फुलों नाल श्रद्धांजलि भेंट की थी। खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल @AIRRNews जलंधर। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं काले सागर विचों लंघण वाले व्यापारक जहाजां ते नौकरी करन तों पहलां सुरक्षा संबंधी जोखमां दा सही ढंग नाल मुलंकण करन लई सलाह जारी कीती है। सलाह विच कहा गया कि अजिहे रोजगार दी चोण विच बेहद सावधानी वरतनी चाहीदी है। मौजूदा टकराव कारण काले सागर अते आले दुआले दे समुद्री खेतरां विच सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस विच ए वी कहा गया कि सहायता लई भारतीय दूतघर जां कौंसलखानियां नाल संपर्क कीता जा सकदा है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित नवे आमदन टैक्स भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। खजाना मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वह भवन में दाखिल होने समय सिर्फ मालिया एकत्र करने बारे नहीं सगों देश की सेवा बारे ध्यान देन। खजाना मंत्री ने कहा कि ईमानदारी उन्होंने काम का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इस मौके सीधे टैक्सा बारे केंद्रीय बोर्ड के चेयरपर्सन रवि अग्रवाल ते आमदन टैक्स विभाग के सीनियर अधिकारियों समेत होर पतवंते मौजूद सन। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया दी उन्हां खबरां दा खंडन किया है जिस विच दावा किया गया है कि मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में जंतर मंतर ते हुए हालिया मुजारिया पिछे किसी विदेशी फंडिंग तो इनकार किया है। इकाई ने कहा है कि इन खबरों में श्री जायसवाल के बयान को गलत ढंग नाल पेश किया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भलके 27 जुलाई तक मानसून की कमजोर स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। इस तो बाद 28 तो 30 जुलाई तक हरियाणा ते चंडीगढ़ विच व्यापक बारिश ते पंजाब विच कई थावां ते मीह पैण की पेशीनगोई की गई है। इस दौरान पंजाब ते हरियाणा के उत्तरी ते पूर्वी हिस्सों विच कुछ थावां ते भारी तो बेहद भारी मीह पै सकता है। मानसून के मद्देनजर लोड़ींदे एहतियाती ते सुरक्षा उपा करन दी सलाह दित्ती गई है। खेडां विच क्रिकेट विच भारत अते जिम्बाबे विचकार तीजा ते आखरी 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच हरारे विच खेडिया जा रहा है। भारत ने पहला बल्लेबाजी करदिया जिम्बाबे सामने जित लई 193 दौड़ा का टीचा रखिया है। ताजा खबरां मिलण समय तक जिम्बाबे ने 13 ओवरां विच 4 विकटां दे नुकसान ते 104 दौड़ा बना लिया ने। भारत के ऋषिकांत सिंह चिनंबम ने ग्लासगो विच राष्ट्रमंडल खेडां विच मर्दां दे 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तिया है। ऋषिकांत ने कुल 264 किलोग्राम भार चुक के नवा रिकॉर्ड कायम किया। ए चांदी दा तमगा इस साल दियां राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत दा दूजा तमगा है। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समूहक हिस्सेदारी हमेशा भारत के सभ्याचारक विरसे की एक ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 को संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी माहर नंदन निलेखणी की अगुवाई में परीक्षा सुधारा से एक उच्च शक्तिशाली टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिक्ख्या मंत्री वजों अहुदा संभाल लिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत दे ऋषिकांत सिंह चिनंबम ने मर्दां दे 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले विच चांदी दा तमगा हासिल कीता है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏ ਆਈ ਆਰ 'ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ। ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0164-22-40-331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
1: ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?

0: हेलो
1: सत
0: श्रीकाल जी। सत श्रीकाल, कौन बोल रहे हो?
1: जगदीप
0: सिंह जी, थोड़ा स्वागत है शाम सुहानी प्रोग्राम दे विच। तुसी कॉल लगाई।
1: हाँ जी।
0: ते गाना केड़ा सुनोगे?
1: गाना कुलदीप मानक दा सुना दो जी।
0: कुलदीप मानक दा तुहाडा पसंदीदा गायक है जी?
1: हाँ जी हाँ जी, पुराने हैं जी।
0: ठीक है, क्योंकि पहला भी मैं तुहाडी कॉल सुनी है। तुसी पहला भी कुलदीप मानक दी?
1: पहली बार ही लगी है जी कॉल।
0: कॉल पहली बार लगी है जी?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है जी, मैनू मैं सुनिया भी तुसी पहला लगाया गा कदे फोन।
1: नहीं पहली बार ही लगी है।
0: ठीक है जी, काम की कर दे हूं?
1: टेलर
0: मास्टर। ठीक है, ताई तुसी पहला थोड़ा संगदे जे बोल रहे सी भी असी शाम सुहानी दे विच फोन।
1: हां जी, मैं कदे गलत तां नहीं लग गया जी?
0: नहीं जी नहीं, बहुत वधिया कीता तुसी, सगो शाम सुहानी दे विच फोन लगाया। ते सानू सगो खुशी हुंदी है जदों नवे नवे

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
0: राजदेव।
1: राजदीप, सत श्री अकाल जी। आज तो भैन नाल गल हो रही है जी।
0: हाँ जी, पहली बारी फोन लग गया मेरा ताजी। हाँ
1: ये तो बहुत ही वधिया जी, जो थोड़ा पहली बार
0: जी
1: फोन लग गया है।
0: हाँ
1: ते
0: जी हाँ
1: किन्ने
0: जी
1: चिर तो ट्राई कर रहे थे तुसी फोन लाने ली?
0: मैं तो बहुत चिर तक कर रही थी मैडम। पहले 6-7 साल पहले लग गया सीगा, अपने दोपहर के टाइम
1: अच्छा,
0: पे लग गया
1: छह
0: सीगा, बस
1: सात
0: मुड़ के
1: साल
0: लगे
1: पहले
0: ही नहीं
1: एडी
0: है।
1: लंबी लाइन च
0: और
1: लगे हुए सीगे।
0: जी
1: ते गाना केड़ा सुनना तुसी?
0: हरभजन मान दा सुनना मैं। हाँ
1: हरभजन मान दा जरूर सुनावांगे। ते साडी भैन ने
0: जी
1: अज पहली बार इन्ने 7 सालां विच सिफारिश
0: हाँ
1: कीती
0: जी
1: है।
0: हाँ जी
1: जरूर सुनो जी, तुहाडी पसंद दा गाना आ रहा है।
0: थैंक यू मैडम।

0: और उनकी जो तपस्या है कि जब भी भारत की बात आती है और जब कर्तव्य की बात आती है तो योद्धा अपने विश्वास से और हिम्मत से उस कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उन वीर शहीदों को बहुत बहुत दिल से नमन करती हूँ कि आज उनके बलिदान से, उनके त्याग से हमारा आज भी सुरक्षित है और हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। और मैं उन माता पिताओं को बहुत बहुत दिल से नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसे सपूत हमारे भारत को दिए जिसके कारण आज भारत का गौरव जिंदा है। जब वो सीमा पर हैं, तो हम यहाँ पर कितने सेफ रहते हैं, हमें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं रहती। हम कितने आराम से, शांति से अपने जीवन को, अपनी खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं।
1: मैं गिरधारी लाल बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैम का फादर हूँ। और आज यहाँ पर जलंधर में ये जो फंक्शन किया जा रहा है, ये 26 जुलाई जो हमारा कारगिल विजय दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 26 जुलाई का विजय दिवस है, इसको जो हम मनाते हैं, हम अपने शहीदों को याद करते हैं, कारगिल शहीदों को। कारगिल की जंग एक बहुत ही जटिल कठिन लड़ाई थी, जो कि इतनी हाइट्स पर 17,000 to 18,000 feet पर हुई। तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है, आज हमारा 26 जुलाई, मैं समझता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इट्स अवर नेशनल फेस्टिवल। और हमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मात्र जब कोई दुश्मन कंट्री अटैक करता है या परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं, वार लाइक सिचुएशन बन जाती हैं, केवल तब ही नहीं, लेकिन हमें अपने हमें शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि जो देश अपने शहीदों को याद नहीं रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मिट जाते हैं, दे शैल नेवर एग्जिस्ट। युवाओं के लिए मेरा मैसेज है कि कंट्री सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है, और देश की सुरक्षा जो है वो भी सर्वोपरि है। तो इसलिए केवल मात्र हमें लग्जूरियस जॉब्स की तरफ जाने का नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, सभी लोग तो आर्मी में नहीं जा सकते हैं या सभी लोग डिफेंस में भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम हमें ये एक देश सेवा का भी, मैं समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम जिसके जरिए हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और सुरक्षा कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, इसे आज की परिस्थितियां देखते हुए और अधिक मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो मेरे युवाओं को यही संदेश है मेरा कि आप डिफेंस में जाइए, आर्मी में जाइए, बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत फैसिलिटीज हैं और आपका एक बहुत अच्छा जीवन उसमें होता है। लेकिन यदि शहादत भी हो जाती है तो वो मरना भी सार्थक है। देश के लिए अगर शहादत भी हो जाती है तो वो भी जो है आपका जीवन उसमें जो है धन्य हो गया, इट इज वर्थ डाइंग।
2: मेरा नाम प्रवीण सिंह, पिंड डंगल वाला। तो मेरा छोटा ब्रदर कारगिल दे विच शहीद हो गया सी 18 जून 1999 नू, जो कि 13 जैक दे विच सीगे। तो वो मतलब कि 5140 चोटी दे विच फतेह करके झंडा लहराने तो बाद फिर उन्होंने स्नाइपर की गोली उन्होंने छाती दे विच लगी सी, तो वो शहीद हो गए सीगे। बाकी जिस तरह हुण प्रोग्राम ऐसे बड़ा अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मतलब कि इस तरह सानू बुलाते हैं, हरेक जगह से मान सम्मान करते हैं और इस चीज़ को लेकर ही बड़ा प्राउड फील करते हैं। प्लस नौजवान कश्यप सभा ने जड़े हमेशा सानू याद करते हैं, तो असं भी चलो अपने वालों आके तो इन्हें मान सम्मान तो अं बड़ा अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। एक्चुअली मेरे फादर, मेरी सारी फैमिली जी है फौज न रिलेटड है। मेरे फादर साहब भी आर्मी चो रिटायर होकर फिर उन्होंने सीआरपी के जॉब करते थे, 96 के रिटायर हो गए। जो उस तो बाद 99 के जो उन्होंने पता लग्या तो उन्होंने भी उस समय की खबर के बच्चे लाया कि मतलब कि रोना नहीं है, जो मेरे बेटे का शहीद मतलब आएगा ना तो रोना नहीं है। सो इस करके फकर तो महसूस होया ही, बाकी जेड़ा चले जाता मुड़ के तो आता नहीं। हाँ, मेरे मतलब कि ताए चाचे दे बेटे है वो सीआरपी।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी।

0: शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का

0: उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल

0: चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi

0: affirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय देना है।
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैड कंटिन्यूअस मीटिंग टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा।
0: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
6: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान
5: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया
0: The defense minister also highlighted the success of operation.

आइए सुनते हैं अनवर और मीना पटकी की आवाजों में दूल्हा बेखता है फिल्म का गाना। गीत गुलशन कानपुरी ने लिखा है, संगीत बप्पी लहरी का।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है परवरिश, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है कर्म, गीत लिखा है राजकवि तुलसी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

में सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासुवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसी लागला लंकेवर काल कठिन आज आदला भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन झिड़कारुन एक आप्त तूत हर विला लंके वर काल कठिन आज पातला
0: सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आसमान से बरसती बूंदें बूंदें नहीं हैं, कविताएं हैं। बरस रही है रूमानियत आसमान से। बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, बारिश त्योहार है, और इस त्योहार को कमरे में बंद होकर नहीं मनाया जा सकता। बारिश खिड़की से नहीं देखी जाती, बिना छाते या रेनकोट के निकल जाना चाहिए सराबोर होने के लिए, क्योंकि बारिश तो धरती का उत्सव है, बारिश तो हमारा त्योहार है।

हमने कहा ना कि बारिश तो धरती का उत्सव है। जैसे ही मौसम की पहली बूंदें पड़ती हैं, मुस्कुराने लगते हैं पेड़ पौधे। देखिए तो कैसे पत्तों का रंग उजला हरा हो जाता है, घास जैसे नाच उठती है, फूलों पर ठहरी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, पंछी चहचहाते हैं तो लगता है कुदरत के इस उत्सव में चल रही है कोई जुगलबंदी। ऐसे मौसम में नदियां और तालाब

भी झूम पड़ते हैं, झरने भी गुनगुनाते हैं, बादल छेड़ देते हैं कोई राग। ऐसे मौसम में उदासी घुल जाती है, धुल जाती है। चलो बारिश में भीगने निकल पड़ो।

बारिश सबको खुश नहीं करती, बारिश किसी किसी को उदास भी करती है। सवाल यह है कि इतनी झूमती हुई खुशियों वाली बारिश किसे उदास करती है? बारिश उसे उदास करती है जिसका साथी उसके पास नहीं। बारिश उसे उदास करती है जो किसी का हाथ पकड़कर सराबोर होने निकल नहीं सकता। बारिश उसे उदास करती है जो अकेला है। बारिश अकेले लोगों के लिए तकलीफ है। अकेले लोगों के लिए बारिश बहुत सारी यादों की जुगनू लेकर आती है जो उनके अकेलेपन को रोशन करते हैं।

0: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता।
0: हम अभी हाजिर हुए।

तपती धरती पर राहत के कुछ छींटे पड़े। जब ठंडक मिली तो सब झूम उठे। बारिश का ये मौसम धरती के चहेतों के लिए काम का मौसम है। मेहनत के पुजारी, धरती पर बीज बिछाने वाले किसान, जो पूजा करते हैं इस धरती की, बीज बिछाते हैं प्यार के, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा न रहे। बारिश के इन दिनों में भीग भीग कर खेतों में काम करने वाले किसानों को सलाम, उनकी मेहनत, उनकी लगन को सलाम। सचमुच हम उनके कर्जदार हैं।

चलो मिलकर भीगे बारिश में, तुम कुछ गुनगुनाओ और तुम्हारे साथ जुगलबंदी करे ये बारिश। इस झूमती बारिश में शहर की सड़कें नापने का लुत्फ ही कुछ और होता है। शहर अगर समंदर के किनारे हो, लहरों में सराबोर होने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पास में है कोई नदी, तालाब या झरना, तो उसका तिलस्म बारिश में दिखते ही बनता है। बारिश रूमानियत का मौसम है। बारिश की इस रूमानियत को किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हाँ, तो इस बारिश में क्या कर रहे हैं आप? अपनों की टोली के साथ पिकनिक का कोई इरादा है या फिर बस कमरे में बैठकर खिड़की से बारिश के छींटे पड़ते देखने हैं? अगर आपके अपने साथ हैं तो ये बारिश आपके लिए है एक संगीत से भरा मौसम, और अगर आप अकेले हैं तो ये बारिश आपके लिए विरह की चुभन लेकर आई है। जिंदगी का एक पहलू विरह भी है। जब कोई अपना दूर हो तो शिद्दत से पुकारना चाहिए उसे, और इंतजार करना चाहिए उन दिनों का जब मिले अपने साथी का साथ।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: मिल गया, और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
4: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
4: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
4: जाऊं कहां बताए दिल,
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
4: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
4: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
5: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आजा तेरी याद आई।
7: जिसके